0: big.
1: कौन मंदिर में जान सब यात्री तो यात्री तो यात्री कौन मंदिर में जाने हो मैं जाने हो मैं जाने हो कौन सामग्री पूजा करने करने करने साथ कसरी लाने हो